चिन्ना जी अच्छा चिन्ना जी गणेश गणेश चिन्ना जी अच्छा चिन्ना जी सही सचा चुना चुना जी।